0: ना छावा सापन कुछ नहीं कराई सम सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपने चल गई था कुछ कराई था वो सब कुछ सांप बिखा फिर नहीं रहता
1: बिखा हो कि नहीं हो कसी का चिन्ह ना दाई
2: लिया नेपाल में पाँच दिन बिखा सांपन का विषय मसून एक थोड़ा ठह गई था जो उन खास कह घर राति के समय में घर भीतर बैठा से कटल से निबाई फिर सियाकर तर कटल पाछ दे भाग जो निचलना कह सास ठहर जो निशेकना में से लक हो और डोम जोन बड़ा रिसहा में हिक रह फाट फूले डोम सांप दिन वा रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह ख संजा बिहान देख पड़ निक्र कटल से फिर लक्व हुई से वो और कैली जाटक सांप निक्र कटल कल से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकट थे पाती होकर रकट बहना हुई से था उसे का हमार देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोपने न फुनका रहना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिंक न कटाई एकदम खतरनाक था
3: बर्खा छा को अनाज बिग्रिना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना धीर बिना कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नाशिबे सापन का दसाई का घटना धीर बिना कर लग पा दे
4: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
0: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसंधान केन्द्र संघ को सहकार्य में रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमांडू मिडटाउन का साथ साथ ही विश्वभर का रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लब द्वारा जनहित का लागि प्रस्तुत संदेश
6: लैंगिक हिंसा प्रभावित को गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवा का लागि टीकापुर अस्पताल में रहकर एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी संग सहकार्य गरौं
7: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
8: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
7: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
8: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
9: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com

0: बिजापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
2: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का?
1: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो न, पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्रफे पटानी हुई कि गुङ्गुवा बुढो हो न, कबु कहुँ घुम जाए त थाहा पाए।
3: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848143426।

0: तपाईलाई थाहा छ,
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
0: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन, बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही, तोर समस्या फेन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
0: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाए।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, हुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ज।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोफ राइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलटमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले साउन 2 गते, 9 गते, 16 गते, 23 गते र 30 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से मुक्त कमैया आज मुक्त कमैया दिवस कैलाली के विजयपुर शिविर के 22 मुक्त कमैया परिवार हुकरा कमैया मुक्ति हुईलाख 26 वर्षसम समस्या जहां के त्यहां लाल पूर्जा अश्रेष्ठता समेत नहीं पैने। विश्वविद्यालय सुधार महासुशासन पहल शर्त रहल सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति किशन दत्ता भत्ता के कहाई कृषि विज्ञान के उप प्राध्यापक हुकरन के थाईत तो नहीं हिलक गुनासा। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 से 120 जाने ज्येष्ठ नागरिक हुकरन छाता और झूल वितरण और जानकी गांव पालिका के वार्ड नंबर 9 बोकलवा में सामुदायिक भवन उद्घाटन। कैलाली के गोदावरी नगरपालिका 1 विजयपुर के शिविर में 22 मुक्त कमैया परिवार से 2 दशक से एक ठाव में जीवन के सपना देखल रहें। सरकार से मुक्त कमैया घोषणा करल संगे आपने घर आपने जगह और सम्मानजनक जीवन जे पैना वहां विश्वास देहल रहा। सरकार से वहां के जगह लाल पूर्जा फिर समय देहल मनो एकर श्रेष्ठता कायम नहीं हो। तब से मालपोट कार्यालय वहां जैठी वर्षों बीत सकले से फिर समस्या जहां के वहीं रहल बा। कमैया मुक्ति के 22 वर्ष पूरा हुई लग फे संयोग कमैया मुक्त कमैया परिवार अभिन फे पुनर्स्थापना के तमाम समस्या भोगती रहल बाट कयों संगे परिचय पत्र बा मनो पुनर्स्थापना में समेटल नहीं हुई। कयों जान संगे लाल पूर्जा बा मनो श्रेष्ठ नहीं हो। कयों जाने पायल जग्गा दुबान लद्यक कटान के जोखिम में रहल बा। यह समस्या समाधान करकलाग आर्थिक वर्ष 2065-66 से फे झन सुस्ताइल समेत बनल वहां की गुनासो बा कारण एकठो समेत देखा गिल बा। विक्रम समय 2075 पासे संघीय संरचना अनुसार पुनर्स्थापना के अंतिम जिम्मेवारी केकर कहना अन्य उल्टा समेत रहल बटिटेल बाट। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 से ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत 75 जने ज्येष्ठ नागरिक हुकरन सम्मान करल बा। वाड़ा कार्यालयमा वाड़ामा रलक 120 जने ज्येष्ठ नागरिक हुकरन सम्मान करले हो। आर्थिक वर्ष 2082-83 के विनियोजित कार्यक्रम अन्तर्गत वाड़ामा रलक ज्येष्ठ नागरिक हुकरन छाता औ झूल वितरण करल वाड़ा सचिव तारा विक्रम राणा जानकारी दिले बाटै वाड़ा कार्यालय से हरेक वर्ष ज्येष्ठ नागरिक हुकरन नै सम्मान देखती आयल के हो। सुरपश्चिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर किशन दत्त भत्त सरकार हो विश्वविद्यालय के नीति अनुसार संस्थागत सुशासन आवश्यक रहल बटैले बाट उपकुलपति में नियुक्त हो सकल पासे पहिल पटक औपचारिक कार्यक्रम में विज्ञान कृषि विज्ञान संकाय स्कूल अफ एग्रीकल्चर के 9 स्थापना दिवस में शुक्रवार टीकापुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ती उपकुलपति भत्त ऐसिन बटुले खुवाई। उपकुलपति भत्त से कृषि विज्ञान विषय के उप प्राध्यापक हुकरन के स्थायित्व भर्ना के काम हाल ही हुई आश्वासन देहल बाट। वहां 8 वर्ष से लेके समेत अध्यापन करैती रलक उप प्राध्यापक हुकरन के थायित्व नहीं हुलक शैक्षिक विकास के अवसर नहीं हुलक गुनासो करले बाट। विश्वविद्यालय के रजिस्टर प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द सिंह विष्ट 5 वर्ष पहले प्राध्यापक हुकरन के थाई भर्ना करना काम रोकला से फेन आप हाली सेवा आयोग समेत खुलना हो दिन के नियुक्त फिर समेत हुई बटवागिल बा। व प्राध्यापक बसंतराज भट्टराई से 2075 साल असोज समेत काठ के कुर्सी में समेत बैठ के कक्षा संचालन करके 9 वर्ष लागतसम सुविधा संपन्न भवन पूर्वाधार बनल पासे प्रशिक्षक हुकरन के थाईतो सुविधा नहीं हुलाक दिन नहीं हुलाक वर्ष गुनासो पोक्ति आयल केन्द्रीय कार्यालय में पुग्न पड़ल बटैती लौव नेतृत्वकै सबको समस्या समाधान गर्न अपेक्षा समेत धरलेबाटै स्कूल अफ एग्रीकल्चरकै प्रमुख संजय कुमार राउटले 2082-83 2,92,00,000 रूपियाँ के आईबीआई प्रस्तुत गर्नबाटै उहाँ से समय चार थो ब्याज के स्नातक तह पूरा कर सकलो। स्कूल अफ एग्रीकल्चर से 47 बीघा जग्गामा नमूना बाली उसक पशुपालन करते आयलबा सह प्राध्यापक डाक्टर केशर बहादुर कुंवर से 8 वर्ष आगे टीकापुर बहुमुखी कैंपस के कोठामा ऋण के कार्यालय खोल के शुरू हुईलक शंकाय के सकु क्षेत्र के विकास हुईल से फेन मानव स्रोत के स्थायित्व विकास हुई नई सकलक बतोले बाटे टीकापुर बहुमुखी कैंपस के उप प्राध्यापक प्रेम प्रसाद भंडारी कठिनाई के बावजूद फिर आशा करके काम करते रहलक उप प्राध्यापक मुकरण के समस्या समाधान हुई पन्ना बतोले बाटे उसको टीकापुर बहुमुखी कैंपस के सहायक कैंपस प्रमुख आत्मराम अधिकारी मानव स्रोत के थायित्व प्रयोगशाला के निर्माण हो फलफूल बगैचा बनैना नई सकलक बतोले बाटे कृषि विज्ञान के स्नातक तहमा 1 ठो सत्रमा 110 जने विद्यार्थी हो। स्नातक उत्तर तहमा एग्रीकल्चर अफ एग्रोनोमी विषयमा समेत 12 जने विद्यार्थी भर्ती आइलक। विश्वविद्यालयमा अब दिन नै हुलक ओर्से प्रशासनिक काम हो। स्नातक उत्तर तह के विद्यार्थी उपकरण के पढ्न लिख्नमा समस्या हुई रहल बतैले बाटै खोजखबरमा एक घड़ी विश्राम पाछ फेर से विश्वन्ति रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको व्यवहार सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएल ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडिज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खानेपानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली
3: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
4: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
3: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा साउन 9 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई भ्योस हुनु मुटुको धड्कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-770। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते दोस्रो शनि।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 के वार्डाध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारी अपना उक्रा चुनाव के बेलामा करलक बाचा अनुसार नै काम करतिरलक बटोले बाटै। जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 के बोकलवामा सामुदायिक भवन उद्घाटन गर्दी वाडा के विकास के लग अपना उक्रा धेर सक्रियता समेत हुक कायम करतिरलको आगामी दिनमा फे लक्ति रहना बटोले बाटै। संविधान सभा सदस्य सुक्तया चौधरी बोकलो बस्तीमा सामुदायिक भवन नै हिलक ओर्से अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमा सहयोग पुग्न बटोले बाटै। वार्ड नम्बर 8 वाडाध्यक्ष तीर्थराज उपाध्याय भवनकै सदुपयोग गर्न आवश्यक रहल बटोटी भवन हे निरन्तर सञ्चालन मल्लन नकरके काम गर्न आग्रह गर्न बाटै। वाडा सदस्य कल्पना खड्का से नकारात्मक से फिर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकले से विकास में सहयोग पुग्न बटोले बाटें। कार्यक्रम में स्वागत वाड़ा सचिव आनंद उपाध्याय से समेत कलर हई कलर से सर्वभापु एकता के प्रतीक के रूप में भवन निर्माण करलक बटोईची दिगु व्यवस्थापन के लाख सक्कू जहान आपन ठाव मन से लग्न आग्रह कर बाटें। कार्यक्रम में वाड़ा सदस्य हर्कराज भाट, नीरू विश्वकर्मा, वार्ड नम्बर 8 के वाड़ा सदस्य झपट प्रेमी, ओसका समाजसेवी भीम बहादुर शाह, कर्णाली करिडोर सामुदायिक बनुआ के अध्यक्ष गोविन्दा विष्ट, अमरावती सामुदायिक बनुआ के अध्यक्ष जमान सिंह साउद, सका छतिवन सामुदायिक बनुआ के अध्यक्ष विनोद भण्डारी, हिमालय राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद अधिकारी, पारस आधारभूत विद्यालय अमरावती के प्रधानाध्यापक जीतराम चौधरी, अरूणोदय माध्यमिक विद्यालय खैरीफाटक के प्रधानाध्यापक कपिल राज भाट, जनता आधारभूत विद्यालय के अमरावती के प्रधानाध्यापक टेक बहादुर सार्की बर्घर, राजाराम चौधरी लगायत से बोल रहे। कार्यक्रम संचालन अनिल कुस्मी कर रहे। भवन प्रदेश सरकार के 40 लाख हो, वाड़ा के 9 लाख लागत में निर्माण हुई लख हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग से आज देशभर तमाम स्थान में भारी से भारी पानी पर्न संभावना रलक ओर से सतर्कता अपनाइना आग्रह कर बाटे। मौसम विद के संजीव अधिकारी के अनुसार हालसम देश में देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रहल बा। मनसून के न्यूनचापीय रेखा पश्चिम ओर समेत सरदर स्थान से फे कुछ ऊपर नेपाल के तराई आसपास तथा पूर्व ओर समेत सरदर स्थान के आसपास में रलक ओर से आगामी दिन सम समेत उल्लेखनीय वर्षा के संभावना रहल बा। आज कोशी, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई भूभाग में कम स्थान में भारी वर्षा तथा एक दो स्थान में ढेर पानी पर्न संभावना रहल विभाग से जनाइल बा। कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के एक दो स्थान में भारी वर्षा हुई सकना पूर्वानुमान करल बा। विभाग के अनुसार संभावित वर्षा के कारण गेगणान बहाड़ स्तर का बार पहरो भूछ जैसी जोखिम से बढ़ सकने रलक ओर से प्रभावित क्षेत्र के बासिंदा हुकरा विशेष सावधानी अपनाई पर्ना उही से दैनिक जीवन में कृषि स्वास्थ्य पर्यटन पर्वतारोहण सड़क व हवाई यातायात में असर पार सकने रलक ओर से विभाग के पाचक मौसम संबंधी सूचना नियमित रूप में समेत ऐति रहना उही समेत हेर्ती रह पर्न आग्रह कर बाटे। देशभर सक्रिय मनसून के कारण बाढ़ पहिरो चट्याङ और सर्पदंश के घटना बढ़ती जाए बेर जनजीवन प्रभावित बनल बा अविरल वर्षा के कारण बाढ़ पहिरो से देश के मुख्य राजमार्ग फिर प्रभावित बनल बा तमाम स्थान में सड़क अवरूद्ध हुईलेको से यात्रु सवारी साधन आवागमन में कठिनाई उत्पन्न हुई बा राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के प्रवक्ता शांति महत के अनुसार मेची मार्ग राजमार्ग उसको अरणी को राजमार्ग के तमाम स्थान में पहिरो गएको कारण जनजीवन प्रभावित बनाइल बा अवस्थ करके बीपी राजमार्ग औ कान्ती लोकपथ में बाढ़ पहिरो के संभावना ढेर रहेको से आवागमन में रोक लगा सकल बा अवस्थ करके मध्य पहाड़ी तो समेत घामपुर साल टाकूकोट ओस्तक सड़क पहिरो में कारण से अवरूद्ध बनल बा बिफेक दिन से समेत बिहान के 10 बजे से लेके शुक्रवार बिहान के 10 बजे सम यी अवधि में 35 जिला में विपद के 45 थो घटना हुई अभिलेख रहल बा उमध्ये 15 थो पहिरो 9 थो सर्पदंश 5 थो अविरल वर्षा तथा 4 थो समेत बाढ़ पहिरो आगलागी चट्याङ समेत वन्यजन्तु समेत आक्रमण के घटना बढ़ल बटुआगिल बा उसक पहिरो चट्याङ सर्पदंश से एक एक जहान के मौठिल बा कल से तमाम घटना में 25 जने घायल हुई बाट प्रभावित क्षेत्र के उद्धार तथा जोखिम व्यवस्थापन के लाख नेपाल प्रहरी 203 जने सुरक्षाकर्मी परिचालन कर प्राधिकरण से जनाइल बा खोजखर में फिर से विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते भी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
5: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस् ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008
6: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
8: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा
9: मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
8: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: विश्राम पास फिर से स्वागत बा प्रस्तुति के क्रम में मौठिला काठमांडू के गोठाटार के अनिता शर्मा के उपचार में एभरेस्ट अस्पताल उपचारमा संलग्न स्त्री तथा पशु प्रसूति रोग समेत विशेषज्ञ डाक्टर जोत्सना शर्मा तिवारी के लापरवाही करलक उपभोक्ता अदालत से ठहर करल बा उपभोक्ता अदालत के विफेक दिन के देहल फैसला अनुसार एभरेस्ट अस्पताल चिकित्सक हुकरण के उपचार के क्रम में कार्यवाही पुष्टि करती पीड़ित पक्ष समेत कुल 29 लाख रूपया क्षतिपूर्ति उपलब्ध करैना आदेश देहलबा अदालतमा उपभोक्ता होमनाथ कडेल के अनुसार अध्यक्ष डाक्टर दिवाकर भट्ट हो सदस्य गेहेन्द्र राज रेग्मी के इजलास से समेत एभरेस्ट अस्पताल में 30 लाख रूपया डाक्टर जोत्सना शर्मा तिवारी से 9 लाख रूपया क्षतिपूर्ति भरैना आदेश देल के हो मृतक का के समेत मनीता के श्रीमान सुभाष प्राजुली के उपचार के लापरवाही हुईलक दावी करती उपभोक्ता अदालत में क्षतिपूर्ति के मांग सहित मुद्दा दायर करल बटवागिलवा प्रवक्ता कड़ेल के अनुसार अदालत से उपचार के प्रक्रिया में हुईलक कमजोरी है निर्णय के समेत मुख्य आधार बनायल बटवागिलवा विशेष करके फ्री समेत एक्लेम पेयर के समेत समस्या रलक पेरम्य है शल्य क्रिया करबेर अनिवार्य रूप में देह पर्ना समेत सालफेट औषधि अपरेशन आगे नहीं देलक शल्यक्रिया पाचक सकेल देलक विषय है उपचार में हुईलक गंभीर कमजोरी के रूप में अदालत से ग्रहण करल बताइल बा वहां के अनुसार अदालत से चिकित्सक उपकरण नियमित परीक्षण समेत करैत रहलक बिरमे उपकरण की स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन सकना पूर्वानुमान हुईती हुईती आवश्यक सावधानी नए प्रयोग तथा फ्री एक्लेम पीआर के समेत बिरमिया उपकरण शल्य क्रिया आगे देह पर न औषधि नई देलक लगायत के विषय में अस्पताल और चिकित्सक दोनों जहन के समेत लापरवाही पुष्टि हुईलक ठहर करलबा करल से चिकित्सक के व्यक्तिगत जिम्मेवारी संगे अस्पताल के संस्थागत तथा प्रशासनिक दायित्व समेत रलक निष्कर्ष निकरती दोनों जहन उत्तरदायी समेत ठहर करल बटवागिलबा कैलाली की गेता स्थित शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नवयुक्त उपकुलपति प्राध्यापक डॉ सुनील कुमार जोशी और रजिस्ट्रार डॉ भीम चंद से शुक्रवार पदभार ग्रहण करलबाट वहांकुरा विश्वविद्यालय की केन्द्रीय कार्यालय पुगे औपचारिक रूप में कार्यभार समारोह पदभार ग्रहण संगे विश्वविद्यालय के शैक्षिक प्रशासनिक तथा संस्थागत विकास से प्रभावकारी रूप में आगे बढ़ना प्रतिबद्धता जनाइल बाटी उबर्दिया में भूमि प्रशासन से कार्यालय भित्रे मादक पदार्थ सेवन करल आरोप में सरकारी कर्मचारी सहित पांच जहन पकड़ाव करल बा जिला प्रशासन कार्यालय बर्दिया के प्रमुख जिलाधिकारी गोगन बहादुर हमाल के कुछ कर्मचारी हुकरा पकड़ाव परल बाट अब वहां के स्वास्थ्य परीक्षण के काम होते रह जानकारी दिल बा गोप्य सूचना के आधार में जिला प्रशासन कार्यालय जिला प्रभारी कार्यालय के टोली से मादक पदार्थ सेवन करती रलक अवस्था में पांच जन है पकड़ाव कर लक हो। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जेना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से आज मुक्त कमैया दिवस कैलाली के विजयपुर शिविर में 22 मुक्त कमैया परिवार का मुक्ति हुलक 26 वर्षा सम जहां के तहे लाल पुर्जा श्रेष्ठा समेत नहीं पीने विश्वविद्यालय सुधार में सुशासन पहल शर्त रहल विश्वविद्यालय के उपकुलपति किसान दत्ता भट्टा के कहा कृषि विज्ञान के प्राध्यापक उपकरण के थाई तो नहीं लग गुनासा टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 3 से 120 जाने ज्येष्ठ नागरिक उपकरण छाता और झूल वितरण हो जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 9 बोकलोवा के सामुदायिक भवन उद्घाटन लिटा बकलक थारू भाषा खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकबी अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते रहिए राम राम।

0: दाई नाच बा कहाँ जाए लग दो
1: सब लगता चर्पी जाए टुका
0: ए रुको ना तो कोशिश हो कल से मैं टॉर्च लाइट और लट्ठी दिए तू ले खजा वो
1: कहाँ से चुनू लट्ठी और टॉर्च लाइट
0: कहाँ करो रही दाई रात एक बाला बाहर निकल पड़ला से वो टॉयलेट जाए पड़ला से दया फिर टॉर्च लाइट बार खा वो लम्बा लट्ठी दे खजे ना जाए पड़ता कहाँ करा की बरखा छक बा सांप रह से था टॉर्च का अजाले सापन दिया खसे गई था वो लट्ठी छक छक आओ सुनकर साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हमन ना स्कूली मैडम सर नुकर साफ नुकर सिद्धना ठाउसी न्यांगा पड़ला से वो काम करो पड़ला से जहाँ फेटा फुसियार रिपोर्ट था कहीं को सीखे लगाया था का आमा छटवा जुवा झपास अथवा ध्यानघा चलक ठाउ में न्यांगा पड़ला से लम्बा लट्ठी देखो छक छक बदेटी न्यांगा पड़ता कहीं को कलबाद
2: सात बरखा छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था मौसम में आपन बसियारा में पानी पैसना पीला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
1: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लघ आई सक
3: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकती था
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आई बुढल्ला सुन टो कि नै वा नन्दे भुवा जा आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएको आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएको अनल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वात खाई आओ जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 98486 39261

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटाका आदि था। का कना हो बाबा फिर उस गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई रहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटाका था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन। ये बुढ़ो ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई झोला उद्योग में। रट गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
4: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाए, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
4: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो, यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, हुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुस्ता रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: आरजीमा गई आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ।
1: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477417।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं सीख ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या को उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुर में
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 98484-27359 र 98-48-42-73-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।

0: दाई नाचबा कहाँ जाइ लग्नु त
1: हिसाब लाग्दा चर्पी जाइ टुका
0: ए रुको नाट पछिन हो कलसे मै टर्च लाइट लट्ठी दिने टु लेख जाओ
1: काजे चुनु लट्ठी वा टर्च लाइट
0: काकर रही दाई राति बेला बाहेनी पर्लसे वा टोयलेट जाइ पर्लसे जहा फे टर्च लाइट बार्ख लम्बा लट्ठी लेख के जाइ पर्था काकर कि बर्खा छ्याक्बा साँप रहस्य टर्च को अजाले सापन ल्या खसेक्दै छ वो लट्ठी ठ्याक ठ्याक आओ सुन साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हमन्ना स्कूली मैडम सर साफ नुक सीतना ठावसी न्यांग पर्लसी वो काम कर पर्लसी जहा फेठा फुसिया विपथा गई को सीखेल बाट का आम छेटवा डिहा झपा अथवा झ्यांगा चलक ठाव में न्यांग पर्लसी लम्बा लट्ठी देख ठ्याक ठ्याक बजेटी न्यांग पथा गई को कल बाट
2: साफ बर्खा छाकक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परैछ यी मौसममा आफन बस्यारामा पानी पैसना फिला कोर्से सुक्खा ठाउँका खोजीमा उपरा बाहिर निस्कठ
3: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्न क्रममा फेर साँप मानव बस्ती लग्घ आइसक्छ
1: विश्वास लग्ना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिह सक्दिथा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: सामाजिक सञ्जालमा गाली धम्की फोटो भिडियो दुरूपयोग नक्कली आईडी बनाएर हैरानी यी सबै महिला हिंसा हुन्
6: अनलाइन हिंसा पनि कानून अनुसार अपराध हो यस्तो भएमा स्क्रिनसट राखौं प्रमाण सुरक्षित गरौं
5: आफ्नो पासवर्ड अरूलाई सेयर नगरौं भावनामा बगेर अरू कसैलाई आफ्नो भिडियो बनाउने वा फोटोहरू सेयर गर्ने अनुमति नदिऊ यस्तो भएको पाइएमा प्रहरी वा साइबर ब्युरोमा उजुरी गरौं
6: सम्मानित व्यवहार गरौं हिंसा मुक्त डिजिटल समाज बनाऊ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिले रही था, कबू झोले फटा का आज था, का कना हो बाबा के होस्ट बाटिन गतिलो ठाउ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए का आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोफ राइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जैब पाछा से शुरू करल मने घर सिजार फेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन का घर हेरो ना पटा सुगुर बनैला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
3: का हुई कमल आइन बुक खाइल बाटो
4: हेरी न काका आई फुला टूरे बारी में गेल रही तबो काट देली बीस निकाल देवी की कह के लेके आयल बाटो
3: सबको कटलक बीस तक उपचार करो तो सर्वदम से उपचार केंद्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ दिखाया सबको कटलक हो कि नहीं हो के पता लगा ख सर्पदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी भेनम से उपचार कर
4: सर्पदम से उपचार केंद्र के विषय में मैं फिर सुनल तो रहू
3: तर कुछ दिन कही आया ना तुरंत उपचार केन्द्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी भेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था अत्यक्ष चिंता नहीं पड़ा
4: हाई ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस

0: हो सही जानकारी प्राप्त कर। ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइ लाग। आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेजिठा।
1: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर।

कापुर एफएम के संजीत 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने कन स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोलाप संप्रपात्र और नेपाली पात्र में फेसन डिढलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगारी में पर्याप्त सहयोग नहीं होला गुनासो कैलाली में अभिमुक्त कमैया पुनर्स्थापना होना बाकी कारो मोटरसाइकिल ठोकलक दुईजना की मृत्यु बागमती सरकार में सीमाले बाहिरिन ओ आगामी 2 दिन देश के धेरै क्षेत्र में अत्याधिक वर्षा की संभावना

0: पूरा खबर कमैया मुक्ति के 26 वर्ष पूरा हुलक कमैया हुक्र मुक्त हुलक दिन के सम्झनामा 26 मुक्त कमैया दिवस मनेलाबाट जानकी गाउँपालिका के वडा नम्बर 3 नयाँ लाइकपुरमा हुलक कार्यक्रममा मुक्त कमैया हुकनके सरकार मुक्त कमैया के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हो बसोबास आदि ध्यान नै देला गुनासो कलबाट वहाँ हुक्र विपन्नता के कारण मुक्त कमैया सहज रूपमा शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा पैना नै सेक्ला गुनासो कलबाट मुक्त कमैया के ध्यौर समस्या रलक वहाँ हुक्र गुनासो भा वहाँ हुक्र जग्गा हुलक फेर सुरक्षित जग्गा नै पैला कैयौं पूर्जा पहिला सिकै जग्गा नै पहिला कैयौं परिचय पत्र समेत नै पलक उहाँ हुकनके गुनासो भा बटघर बालकृष्ण चौधरी मुक्त कमैया दीर्घ रोग लगलक उपचार नै पहिलक मना अवस्थामा रलक सरकार ध्यान देपना बुटिलवाटी मुक्त कमैया बैठना कल्पुनिया थारू नयाँ लाइकपुर बैठना जैनानगरमा सड़क लाइट नै हुलक रातकी समयमा आउजाउ गर्न समस्या हुना दुर्घटना तथा आपराधिक घटना भर्ती गलक सड़क मरमतमा समेत सरकार ध्यान नै दिला गुनासो कलबाटी ओह बैठना विदेशिनी थारू जमारा लद्याके कटान तीव्र पलक जमरा लद्याके बस्ती उहर धार परिवर्तन कलक लद्या नियन्त्रणमा लगानी कदनामा कलबाटी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मीना चौधरी मुक्त कमैया रोजगारी के समस्या रलक बढ़िया इलक सुरक्षित भवन नै हुलक उच्च धारा शौचालय नै हुलक मह लगानी कदनामा कलबाटी जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 के वडा अध्यक्ष सुरेश चौधरी मुक्त कमैया के समस्या बारे अपना जानकार लग बुटेटी सरकार कमैया मुक्ति करलक कारणाभिन मुक्त कमैया के स्वतन्त्रता पूर्वक बासना पैलक बुटिलबाट विक्रमसम्म 2057 साउन 2 गते नेपाल सरकार अनुचित ऋण मिनाही सहित कमैया मुक्ति के घोषणा कल रही ओहो के एक वर्ष पाछ जारी कमैया श्रम निषेध ऐन 2058 बधुआ श्रम कानी रूपमा पुनः प्रतिबन्ध लगेलबाट कमैया के पर सक्कु ऋण मिनाहा करके पुराण लिखित सम्झौता स्वतः अमान्य करके सरकार पुनः स्थापना केला घर जमीन नगद सहायता और शिव विकास कार्यक्रम संचालन कलबाट मुक्त कमैया समाज कैलालीकी उपाध्यक्ष सीता चौधरी के अनुसार आभिन 1500 मुक्त कमैया परिचय पत्र पैना बाँकी हो 900 परिचय पत्र पैलक जग्गा पैना बाँकी रहलबा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीकी करिब 6,26,500 रूपियाँ बरामदकी भन्सार छलीकी समान बरामद कलबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीकी शनिबार जारी कलक प्रेस विज्ञप्ति अनुसार साउन 2 गते जिल्ला के धेरसिन ठाउँमा खटलक प्रहरी टोली भन्सार छलीकर्के नेपाल भित्रीलक धेरसिन समा बरामद कलबाट प्रहरी के अनुसार बरामद कलक साउनमा सुर्ती बीडी एसी स्ट्याण्डर्ड तथा घरैसी प्रयुक्ति अन्य सामग्री रहलबा बरामद सामानके अनुमानित मूल्य 6,26,500 रूपियाँ रलक प्रहरी जनेलबा बरामद कलक सकु सामान आवश्यक कानूनी कार्यवाही कलक भन्सार कार्यालय त्रिनगर बुझेलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीकी सहप्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक कैलाश सिंह विष्ट जानकारी दिलबाट प्रहरी जिल्लामा भन्सार छली अवैध आय तथा राजस्व चुहार नियन्त्रण केलाक निगरानी चेक जाँचमा थप प्रभावकारी बनेटी जैन जनेलबाट खोज खबरमा एकरी विश्राम विश्राम पाछा फेर से विश्वन्तीय विश्राम सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
2: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको व्यवहार सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिस नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिस डेभलपमेन्ट स्टडिज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा बाह्रको पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुर कैलाली
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 98484-27359 र 98-48-72-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै
0: छापाकी गौरीगंज गाउँपालिका दुईसी धुलाकी राजमार्गमा कार र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्के मोटरसाइकलमा सवार दुईजनाकी मृत्यु हुँदा शुक्रबार दिनकै 1 बजे गौरीगंज दुई कृष्ण खोला छेउ स्थित धुलाकी राजमार्गमा पश्चिम विराटनगर से पूर्व तुलाचन चौकतर्फ आईटी कलक प्र 102-002-5101 नम्बरकै कार विपरीत दिशामा से जैती कलक बिआर 38H-5547 नम्बरकै मोटरसाइकल एक आपसमा ठोगिल र दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक मोरङ रतुवा माई पास गोविन्दपुर बैठना 30 वर्षीय मोहम्मद नूर इस्लामो मोटरसाइकल के पास सवार ओहठामा 35 वर्षीय एनबी मोजाबुल हक गम्भीर घाटी रही मोटरसाइकल चालक इस्लाम हक दिनके 2 बजे 37 बजे उहाँ दमक अस्पताल पुगल चिकित्सकीय मृत्यु घोषणा कला रहे उसका गम्भीर घाइते हक उपचार केला न्यूरो अस्पताल विराटनगर लैजाके चिकित्सक जाँच गर्न क्रम दिनके 3:13 हुइलक मृत घोषणा कलबाट दुर्घटना लगत्त इलाका प्रहरी कार्यालय गौरीगंज मसे प्रहरी निरीक्षक गिलास कुमार अधिकारीकी कमाण्डमा खटलक प्रहरी टोली घाइतेको उद्धार गरी अस्पताल पठाइला रही प्रहरी कार नियन्त्रण मूल्यबाट कार चालक विराटनगरकी 13 बैठना 35 वर्षीय विवेक सिंह फे घाइते रहलबाट उहाँकी विराट नर्सिङ होम विराटनगरमा उपचार हुटिरहल जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा जनिलोबाट बागमती प्रदेश सरकारमा से नेकपा एमाले बाहिरिना हुलबाट एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दल सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्लक आफ्न मन्त्रीह राजीनामा दिना निर्देशन देलबाट संसदीय दलकी नेता जगन्नाथ थपलिया मन्त्रीह पद्मसे राजीनामा देखि सरकारमा से बाहिरिना निर्देशन देलबाट नेता थपलियाकी आफ्न हाल काठमाडौँमा रलक जन्ती मन्त्रीमा राजीनामा दिना निर्देशन देल सेक्लक बोटिलोबाट उहाँके काही मन्त्री के राजीना पाछ आगामी रणनीतिक तय हुन अन्य प्रदेशमै सिजैसिन सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस एमालेकी बीच गठबन्धनमा विवाद उत्पन्न हुल पाछ सरकारमा से बाहिरिना निर्णयमा पुग्लक एमाले जनिलोबा नेता थपलिया मन्त्री समय मिलाएके मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिया समक्ष राजीनामा बुझिन निर्देशन देलक जानकारी कार्यालयबाट बागमती प्रदेश सरकारमा एमाले 3 जना बिना विभागीय सहित 6 जना मन्त्री रहलबाट एमाले मसे कृषि तथा पशुपन्छी विकास वन तथा वातावरण मन्त्री मधुसूदन पौडेल उद्योग पर्यटन श्रम तथा यातायात मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा सरकारमाबाट ओशंकरकी बिना विभागीय मन्त्री किर्म किरण थापा मगर जयराम थापा भरतपुर कृषि रहलबाट ओहर कृषि तथा पशुपन्छी विकास वन तथा वातावरण मन्त्री मधुसूदन पौडेल फेर राजीनामा बारे आफ्न औपचारिक जानकारी नै हुलक बोटिलोबाट एमाले बागमती प्रदेशकै प्रमुख सचेतक एकलाल श्रेष्ठ सरकार छर्न विषयमा छलफल हुटिरहलासे फेफे मन्त्री के राजीनामा बारे अन्तिम निर्णय होस्याकलो थप निर्णयके विषयमा आफ्नो जानकारी नै हुलक बुटेलोबाट मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाकी नेतृत्वमा रलक प्रदेश सरकार गत जेठ 21 गते मन्त्रालयकी संख्या 14 मसे घटाके 8 बनिना निर्णय कलक रही उहो निर्णय साउन 1 गते कार्यमा लान्डुपाछ 8 मन्त्रालय जिम्मेवारी तोक्लसफे 6 जना मन्त्री बिना विभागीय मन्त्रीकी रूपमा धर्लबाट
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 9894827359 र 9848423059 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै
5: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जा सेक्ल
6: अरे का करुरी बुढिया कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिल्बो मिल्बो नि करत का कैन हो का
5: मिस्तरान वर्जन हुकन घर हेरो न पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्रफे पटानी हुइन कि गुंगुआ बुढो हो न कबु कहुर घुम जाए त था पाए
7: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426
8: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्मा टेरसलाई सम्झिनुहोस्
9: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ब्याग प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पितलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैराली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808
0: विश्राम पासा फेरि स्वागत बा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण आगामी दुई दिन देशके देवरसिंह क्षेत्रमा अत्याधिक वर्षाके सम्भावनालाई उच्च सतर्कता पिना सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित निकायहरूका कलबाट जल तथा मौसम विभाग विभागीय पूर्वानुमान अनुसार आजको काल आइतबार से कोशी गण्डकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेशके पहाड़ी तराईके एक दुई ठाउँमा अत्याधिक वर्षाके सम्भावना रहला उस्तगत देशके हिमाली तथा पहाड़ी भूभागके कोशी बागमती लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेशके तराईकी अधिकांश ठाउँ तथा मध्य बागमती गण्डकी प्रदेशके तराईकी एक दुई ठाउँमा भारी से अति भारी वर्षा हुन सम्भावना लगजनेबाट अत्याधिक वर्षाकै कारण आकस्मिक बढ़िया पहिरो डुबान विक्रान बहाव कटानके जोखिम भर्ना हुलक आवश्यक सतर्कता पिना प्राधिकरण सर्वसाधारण आग्रह कलबाट प्राधिकरण अत्यावश्यक काम बाहेक रातकै समयमा यात्रा नै गर्न तथा जोखिम युक्त जिल्लामा रातकै सवारी आगमन रोक्न सम्बन्धित निकाय अनुरोध कलबाट विशेष गरी पाँचथर इलाम छापा संखुवा सभा तेह्रथुङ भोजपुर खोटाङ धनकुटा सिन्धुली ललितपुर काभ्रे सिन्धुपाल्चोक नुवाकोट चितौन गोर्खा लमजुङ कास्की तनहु पर्वत बागनुङ मेग्दी स्याङ्जा जिल्लामा रातकै समयमा सवारी सञ्चालनमा विशेष सावधानी अपनाइन कहिल्वा प्राधिकरणके प्रवक्ता शान्ति महत तीन्थो सुरक्षा निकाय स्थानीय तह तथा स्वयंसेवक विपद प्रति कार्यकला तयारी अवस्थामा रहना जोखिमयुक्त राजमार्ग तथा सड़क खण्डमा डोजर एक्सकाभेटर लोडर लगायत उपकरण तयारीमा अवस्था धरना तथा पूर्व सूचना आधारमा जोखिम रहक बस्तीके नागरिक सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सरकार हुलक निकाय आग्रह कलबाट प्राधिकरण लद्या तथा खुलवाकी तटीय क्षेत्र पहिरोके जोखिम हुलक ठाउँ खुलवा किनारके बस्तीके बासिन्दा विशेष सतर्कता रहन अनुरोध गर्दै विपद सम्बन्धी सूचना तथा आपतकालीन सहयोग केलाक सम्बन्धित निकायके हटलाइन सेवाके उपयोग गर्न आग्रह कलबाट संघ जल तथा मौसम विभाग विभाग प्राधिकरणमा जारी हुन अत्याधिक पूर्वानुमान तथा चेतावनी नियमित रूपमा पालना गर्न फेरि अनुरोध कलबाट यही समाचार संघ खोज खबर बराइल जिनासे पहिले खबर के मुख्य शीर्षक फेरि एकचो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीमा पर्याप्त सहयोग नै होला गुनासो कैलालीमा अभिमुक्त कमैया पुनस्थापना हुन बाँकी कारो मोटरसाइकल ठोके दुईजनाकी मृत्यु बागमती सरकारमा सेमाले बाहिरिन आगामी दुई दिन देशकै धेरै सिन क्षेत्रमा अत्याधिक वर्षाकै सम्भावना लिटा बक्ला खोज खबर अथवा प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद लिटा बक्ला खोज खबर से मिता चौधरी विदाई टू एक पाचक छ बजे के खोज खबर सुन्न सिक्वी सामुदायिक रेडियो टीका प्रफम सुन्ती रवि राम राम
10: राहुल कमल आयन बुखाइल बाटो त
11: एरिना काका हाई फुला टुरे बारीमा गेल रही तपो काट देली बीस निकाल देवी की कैके लैके आयल बाटो
10: सप्पो कटक विषयक उपचार कर सर्वदम से उपचार केन्द्र में ले जाए पठा हूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ बिखार सप्पो कटक हो कि नहीं हो के का पता लगा ख सर्पदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी भेनम से उपचार कर
11: सर्पदम से उपचार केन्द्र के विषय में मैं फिर सुनल तर हूँ
10: तर कुछ ही कही आना तुरंत उपचार केन्द्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी भेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था चिंता नहीं पड़त
11: भाई ना तब ना ट्रेन कुछ फेन नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कई सकली बाटो
10: एम्बुलेंस आपूंगा समय लागत के था मरछवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी रे बाबू संदेश रोकर झट बाहर आता
12: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरमेन का समय में जो उपचार के ख जान जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केन्द्र संचालन में बा ई उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न हो सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटीभेनम निःशुल्क उपलब्ध करेला बा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र संपर्क नंबर ठहल रह पठा सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेभिथा
13: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जैब? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नि करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैला बाट, अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा क टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्रफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
3: जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी भुवा जागिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना हुने न पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा तुहार रामपुरान दिदी ये नै सामुएल ज्वेलर्स मा से गहना बना कान से कि कतरा सुघर बना कान लबाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वा नन्दे भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनी न पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41268 और 98486 39261।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: टीकापुर नगर पालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाने कार्यक्रम संबंधी सूचना
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर
6: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल
7: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नहीं करत का कहीं ना हो का
6: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्टा फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
2: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426
8: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झोलै फटाका आजि ठ का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहेरै
1: ओहो इ बुढा लिखबे का हुई थी जरम भर भर बरैति रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेराकै ठ कबु पेन्सिल हेराकै ठ कबु झोलै फटाकै ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो त कहाँ टीकापुर म रलक रगैया झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिएरै थी ना कबू पेंसिल रहीन ना झोला फाटल हुईन कैक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: नहीं कमी सर।
1: आओ आओ तू पहले से ही ना झील कर लो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
0: कुछ नहीं हुई सर, टॉयलेट के पंद्रह सफवा रख लू, डर लग के घूमक रहते हूँ, जैसे चेयर सर लग लो तो हलचल नहीं करें। मोल सब कैठा पहनो तो पहले जाके
1: मोल सब पहना चलेना तो नहीं चले ना?
0: नहीं चले ना सर।
1: विद्यार्थी भैया बाप मुकरा मुरा से कह रहा हूँ, मोल सब पर देखो कल से भैया न चलाए नहीं बिठा सब मूल से भी वाकर में रहा बीस असर निकलत खाना नहीं हो जीती हाँ मोल सप्पा मोल देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाथ से पकड़ा नहीं बीत
0: सर मोल सप्पा देखना से क्या करना
1: सप्पा मोल अस देख पड़ना से थे जात से मोल नहीं रह सकत अथवा मोल कुछ देर पास असम थे सप्पा दस सकत वह उससे मोल अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाए नहीं बीत बेन तनिक नम्मा लट्ठी ले चला कर मोल नहीं मोल कहीं का जाना से बीठा
2: मोल सापन से सावधान रही मोलवा मार्गी सपोहना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासी सपवा दस सिट्ठा संभव हुई सम सपो फोटो खींची व पहचान कला विज्ञान से संपर्क करी
3: सर्पदंग से संबंधी भर पर्द व सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंग से उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता लगा आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेरा शेयर दिठा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।